नमस्कार, 15 जून के महक कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आदर है, अभिनंदन है। घर में अगर बच्चों के चहक हो और अच्छा संगीत हो तो घर में खुशियों की महक फैल जाती है। ऐसी महक फैलाता है आपका अपना कार्यक्रम महक। अच्छे मनोरंजन का वादा लेकर एक बार फिर हाजिर हुआ हूं सुखदेव जसवाल। आज के कार्यक्रम में पेश करूंगा आपके लिए गायक और म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार जी के गाने। हम श्रद्धांजलि देंगे फ्रीडम फाइटर राम प्रसाद बिस्मिल जी को और हमारे परमवीर चक्र विजेता धन सिंह थापा जी।

कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा ऑनलाइन सुन सकते हैं truerr.org.au पे लिसन ऑनलाइन प्ले बटन और मोबाइल पर भी इसी तरह से truerr.org.au। और एक और तरीका है, आप मुफ्त फ्री ऐप डाउनलोड कर सकते हैं कम्युनिटी रेडियो प्लस, और अपने मोबाइल के साथ जहां भी हों कम्युनिटी रेडियो प्लस ऐप पे आप अपना मनपसंद कार्यक्रम महक सुन सकते हैं। पूरे कार्यक्रम में समाचारों पर बात होगी और आपकी फरमाइश पेश करूंगा, तो अपनी फरमाइश भेजने के लिए बहुत ही आसान है, फोन उठाइए, नंबर घुमाइए 02981622777 02981622777, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश आप तक लाने की।

हेमंत कुमार, जन्म हुआ 16 जून 1920 को वाराणसी में, जहां उनके नाना जी रहते थे और एक वैद्य का काम करते थे। बड़े हुए फिल्मों की तरफ रुझाव बना। पहली फिल्म का गीत उन्होंने रिकॉर्ड किया फिल्म राजकुमार एर निर्वासन के लिए, एक बंगाली फिल्म 1940 में। संगीतकार थे एस टी बर्मन साहब, और एस टी बर्मन साहब के साथ उनका साथ बहुत देर तक बहुत लंबा चला। पहला हिंदी फिल्म गीत रिकॉर्ड किया 1942 में, फिल्म थी मीनाक्षी। हेमंत कुमार जी को रविंद्र संगीत का माहिर समझा जाता था। म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म थी बंगाली में अभियात्री, और वो बनी 1947 में। 1945 में गायिका बेला मुखर्जी से शादी की, और उनके दो बच्चे हैं, बेटा जयंत और बेटी रानू। जयंत ने अभिनेत्री मौसमी चटर्जी से शादी की। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य बने हेमंत कुमार जी। बॉम्बे आ गए और सलिल चौधरी जी का साथ हुआ। 1947 में हेमंत कुमार जी ने सलिल चौधरी के साथ एक 6 मिनट का गीत रिकॉर्ड किया, और ये गीत था कानेर बधु, यानी गांव की बधु। इसमें एक अमीर परिवार की महिला की कहानी है जो अकाल के प्रकोप से बिखर जाती है। बंगाल में आपको याद होगा बहुत बड़ा अकाल आया था, फैमिन आया था, और ये महिला अकाल के प्रकोप से बिखर जाती है। हेमंत और सलिल जी का बड़ा नाम हुआ इस गीत से। 1951 में फिल्मिस्तान स्टूडियोज में काम शुरू किया हेमंत जी ने। फिल्म थी आनंद मठ, उसका उन्होंने दिया संगीत। लता जी की आवाज़ में वंदे मातरम इस फिल्म का गाना बहुत ही चला। एस टी बर्मन के संगीत में देवानंद की फिल्मों के लिए हेमंत जी ने बहुत से गाने दिए और बहुत से पॉपुलर भी हुए, जैसे कि ये बेहतरीन गाना जो हमारे कार्यक्रम के शुरू में अपनी धुन भी आपको सुनाता है।

और देवानंद साहब के साथ उनकी एक और फिल्म थी जिसमें उन्होंने गाना गाया था और वो भी एस टी बर्मन साहब के संगीत में, और फिल्म थी पतिता। और इसका ये गाना उस समय जब ये फिल्म आई थी पतिता तो बहुत ही पॉपुलर हुआ था।

हाउस नंबर 44 ये भी देवानंद साहब की एक फिल्म थी और इस फिल्म के बारे में क्या कहूँ, केवल ये कहना चाहूँगा कि देवानंद साहब की सभी फिल्मों में से, एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, बीस नहीं, सभी फिल्मों में से ये शायद सबसे कम बजट में बनी होगी, क्योंकि इसकी 90% शूटिंग एक ही स्टूडियो सेट की है और थोड़ी बहुत इधर उधर की है, लेकिन बजट देखा जाए तो शायद सबसे कम ही रहा होगा। लेकिन वो ज़माने और थे, आजकल के ज़माने और हैं। अब तो हर गाना एक अलग कंट्री में, एक अलग देश में फिल्माया जाता है। लेकिन सुमन ने पसंद किया है हाउस नंबर 44 का ये थोड़ा सा दर्द भरा गाना महक 2RRR 88.5 FM पर।

और लता ने पसंद किया है ये बेहतरीन गाना, और ये गाना है एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी देवानंद साहब की ही थी, क्योंकि अभी हम सुन रहे हैं कि हेमंत कुमार जी ने देवानंद साहब के लिए को किस किस फिल्म में गीत गाए हैं, और ये फिल्म थी जाल। बहुत ही शुरू की फिल्म थी देवानंद साहब की, और बहुत एक पॉपुलर फिल्म थी उस समय की, और हेमंत कुमार जी ने दी थी बैकग्राउंड आवाज़, उन्होंने प्लेबैक दिया था देव आनंद साहब के लिए।

आजादी की लड़ाई का जज्बा तेज करने वाला ये गाना लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल ने, जिनका जन्म हुआ 11 जून 1897 को। 11 जून 1897 को उनका जन्म हुआ शाहजहांपुर में, उत्तर प्रदेश में। पिता से ही हिंदी सीखी, एक मौलवी जी से उर्दू सीखी और फिर अंग्रेजी स्कूल में दाखिला ले लिया। शाहजहांपुर में ही आर्या समाज में भी शामिल हुए। जब 18 वर्ष के हुए तो भाई परमानंद और हरदयाल की फांसी की सजा से गुस्सा गए और गुस्साए राम प्रसाद बिस्मिल ने कविता लिखी मेरा जन्म। कविता में भारत से अंग्रेजों का राज खत्म करने का वादा था। राम प्रसाद बिस्मिल के मातृवेदी संस्था की स्थापना भी की उन्होंने और गेंदालाल दीक्षित से संपर्क में आए। साथ ही सोमदेव ने ही दोनों को मिलाया था। जनवरी 1918 को राम प्रसाद बिस्मिल जी ने देशवासियों के नाम संदेश छापा। इसे राम प्रसाद बिस्मिल की कविता मैनपुरी की प्रतिज्ञा के साथ बांटा गया। धन इकट्ठा करने के लिए ये किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। पुलिस ने छापा मारा, बिस्मिल पर्चों के साथ निकल गया। बचने के लिए जमुना में छलांग लगा दी, पानी के नीचे नीचे तैरकर बच निकले। दीक्षित कैद हुआ लेकिन भाग निकला। 11 नवंबर 1919 दीक्षित और बिस्मिल को भगोड़ा करार दिया गया। 1919 से 1920 तक वो छुपे रहे। मन की लहर कविता संग्रह लिखा। बंगाल से बोल शिवकों की करतूत और योगिक साधना का हिंदी में अनुवाद किया। 1920 में मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी के आरोपियों को छोड़ दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल ने कोर्ट में स्टेटमेंट दायर की कि वो क्रांतिकारी गतिविधियों से दूर रहेगा। 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास करवाया। कांग्रेस की जनरल बॉडी मीटिंग में उन्होंने ये प्रस्ताव पास करवाया। महात्मा गांधी, जो इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे, इस बारे में कुछ न कर सके। फरवरी 1929 फरवरी 1929 में चौरी चौरा में कुछ किसानों की पुलिस फायरिंग में मृत्यु हो गई और राम प्रसाद बिस्मिल जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई। नॉन कोऑपरेटिव अभियान के सदस्यों ने पुलिस थाने पर, चौरी चौरा के पुलिस थाने पर हमला किया और 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। महात्मा गांधी ने इस नॉन कोऑपरेशन अभियान पर रोक लगा दी। जब गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में फैसला नहीं बदला गया तो कांग्रेस के दो हिस्से हो गए, एक हुआ नरम दल और दूसरा हुआ गरम दल। 1923 में लाला हरदयाल जी की सहमति से सचिंद्रनाथ सान्याल के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। 1925 में एक पर्चा निकाला द रेवोल्यूशनरी, यूनाइटेड प्रोविंसेस में, जो अब उत्तर प्रदेश है, वहां बांटा गया।

9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 लखनऊ के पास काकोरी में रेलगाड़ी में जा रहे सरकारी खजाने को लूटा गया। जर्मन मोजर C-96 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से हमला किया गया। अशफाकुल्ला खान ने पिस्तौल मनमतनाथ गुप्ता को पकड़ाकर सेफ खोलने की कोशिश की। मनमतनाथ गुप्ता से गलती से पिस्तौल चल गई और अहमद अली नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 40 क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि केवल 10 लोग डकैती में शामिल थे। गोविंद वल्लभ पंत और साथी वकीलों ने बचाव का केस लड़ा। 16 सितंबर 1927 अंतिम अपील ठुकरा दी गई। बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लहरी को मौत की सजा हुई।

19 दिसंबर 1927 गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल और साथियों को फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल के पार्थिव शरीर को तब राप्ती नदी के किनारे ले जाया गया अंतिम संस्कार के लिए। जगह को राजघाट के नाम से जाना जाता है। शाहजहांपुर में रिवरनी मोहल्ले में 18 दिसंबर 1994 को उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक का उद्घाटन किया। भारतीय रेल की नॉर्दर्न रेलवे ने शाहजहांपुर से 7 मील की दूरी पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल स्टेशन बनाया। काकोरी में काकोरी कॉन्स्पिरेसी की याद में 19 दिसंबर 1983 को प्रधानमंत्री उस समय की इंदिरा गांधी ने मेमोरियल का उद्घाटन किया। 19 दिसंबर 1997 को राम प्रसाद बिस्मिल की याद में एक डाक टिकट भी निकाला गया।

और हमारे इस महान फ्रीडम फाइटर राम प्रसाद बिस्मिल को हमारी भी भीनी भीनी हम उनको प्रणाम करते हैं और कुछ उम्मीद करते हैं कि आज के ज़माने में भी हम उनकी भावना को याद रखें और अपनी देश को उसी आदर से देखें जिस आदर से हमारे फ्रीडम फाइटर देखते थे। हेमंत कुमार गायक और म्यूजिक डायरेक्टर, गायक होने के कारण वो जानते थे कि एक गायक जो है गाने को किस तरह से समझता है, किस तरह से पेश करता है, और म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर उन्हें मालूम था कि गाने में संगीत की क्या ज़रूरत है, संगीत के क्या महत्व है। इसीलिए शायद वो बहुत सफल हुए अपने काम में। और अगला गाना जो है उसे पसंद किया है शकुंतला ने, और ये फिल्म का नाम है शर्त। इसे सुनते हुए 02981622777 हमारा नंबर यहाँ

और अगला गाना भी एक फरमाइशी गाना है, और इस गाना, यही जो गाना है, इसे लिया है फिल्म खामोशी से। इस फिल्म में हीरो तो थे राजेश खन्ना, लेकिन इस फिल्म में धर्मेंद्र जी का रोल भी था और हीरोइन थी वहीदा रहमान जी। और कहानी है एक हॉस्पिटल की, जहां आप जो मन से विचलित हैं ये कह लीजिए, हम वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहते, लेकिन जो मन से विचलित हैं उनका इलाज किया जाता है कि ताकि उनका मन एक बार फिर आम नॉर्मल हो जाए। और वहीदा रहमान जी को इस फिल्म में बहुत सराहा गया था, लेकिन

जी ये गाना लता जी ने श्रद्धांजलि देते हुए हेमंत कुमार जी को गाया था, लेकिन ये गाना तो मैं आपको नहीं सुनाना चाहता था। तो पेश है आपके लिए वो गाना जो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, और जो गाना आपको सुनाना चाहता हूँ, जाहिर है कि आज हेमंत कुमार जी के गानों का कार्यक्रम है, तो आज उन्हीं की आवाज़ में होना चाहिए ना ये गाना। तो पेश है आपके लिए हेमंत कुमार जी की आवाज़, महक 2RRR 88.5 FM।

0: 101 Music is a proud sponsor of 2RRR.
1: Let Minuteman Press at Gladesville press your case with designing, printing and promotion with useful promotional products carrying your name and contact to attract prospects and have customers singing your name with brochures and flyers to relay key messages in an easy-to-digest format. Graphically appealing, carefully scripted and expertly printed. Yes, let 2RRR sponsor Minuteman Press press your case. For a free quote, go to minutemanpress.com.au or come on into Unit 4, Gladeview Business Park, 435 Victoria Road, Gladesville.
2: Our City of Ryde Mayor, Trenton Brown, will be holding his next Meet the Mayor gathering on Saturday the 28th of June, and you are invited. This is his opportunity to meet members of our city to discuss Council's initiatives, forthcoming events and ongoing services. So come on down and say hello on Saturday morning the 28th of June at the Midway Shopping Centre, Denniston East, between 9 and 10:30am. For more information, phone our Council's Customer Service Centre on 9952 8222.
3: हेमंत जी के गानों के इस कार्यक्रम में अब जो दो गाने आपके लिए पेश करने वाला हूं मैं वो देशभक्ति के हैं। जी हां, हेमंत कुमार जी ने दो ऐसे गाने गाए हैं जो बच्चों की फिल्मों से थे। एक तो बच्चों की फिल्म नहीं थी, उसके बारे में बताता हूं, लेकिन एक फिल्म तो बच्चों के लिए ही थी। फिल्म थी जागृति, उसमें उन्होंने ये जो गाना गाया था ये बच्चों के लिए देश प्रेम का एक बहुत ही प्यारा गाना बन गया था। दूसरा गाना कौन सा था इस गाने के बाद? और इसे सुनते हुए आप हमें फोन भी कर सकते हैं 02 9816 2777।

फिल्म जागृति का संगीत दिया था हेमंत कुमार जी ने, और इस गाने में आवाजें हैं लता मंगेशकर और आदिनाथ मंगेशकर जी की। बहुत ही प्यारा गाना। और दूसरा जो देश प्रेम का गाना है वो है फिल्म गंगा जमुना का। दिलीप कुमार साहब थे, विजयंती माला थी, लेकिन एक कहानी का हिस्सा है जिसमें बच्चे शामिल हैं, और बच्चों को पढ़ाते हुए ही ये गाना उनके सुनाया गया है। और इस गाने में आवाज़ है हेमंत कुमार जी की।

क्रिकेट का काफ़ी माहौल रहा पिछले सप्ताह, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था और ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप थी, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जिसे भारत भी जीत चुका है, लेकिन इस बार मुकाबला था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये कल तय हो गया 2025 का वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। 27 साल के बाद साउथ अफ्रीका की जीत हुई है। ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन खेल के बावजूद अंत में साउथ अफ्रीका भारी पड़ा। स्कोर रहा ऑस्ट्रेलिया का 212 पहले इनिंग्स में और 207 दूसरी इनिंग्स में। साउथ अफ्रीका का ने बनाए केवल 138 पहली इनिंग में और खतरे में था, लेकिन दूसरी इनिंग में बहुत ही अच्छा खेल दिखाते हुए साउथ अफ्रीका ने 282 रन बनाए 5 विकेट खोकर, यानी के 5 विकेट से वो जीत गया। बहुत बहुत बधाइयां साउथ अफ्रीका को और ऑस्ट्रेलिया को, क्या कहें, दैट्स क्रिकेट। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम जो कि अमेरिका में है, जी हाँ, अमेरिका जहाँ क्रिकेट खेली भी नहीं जाती, वहाँ है हार्टफोर्ड कनेक्टिकट में। हार्टफोर्ड कनेक्टिकट में 2 जनवरी 2009 को आईसीसी ने दुबई में इसकी घोषणा की थी और स्थापित किया कनेक्टिकट हार्टफोर्ड में। 55 खिलाड़ियों को पहली बार शामिल किया गया था। अब कुल 122 खिलाड़ी शामिल हैं आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में। 15 पुरुष और 2 महिलाएं 2025 में शामिल, माफ़ कीजिए, 2025 में 7 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, 5 पुरुष और 2 महिलाएं। न्यूजीलैंड के डेविड विटोरी, इंग्लैंड के की सारा टेलर, साउथ अफ्रीका के ग्रैम स्मिथ और हाशिम जो है अजुला, पाकिस्तान के सना मीर, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन और भारत के एमएस धोनी। बहुत बहुत बधाइयां सबको और बहुत बहुत बधाइयां आपको, क्योंकि आप हमारा साथ दे रहे हैं और उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कार्यक्रम सुनते रहने के लिए। और अगला गाना जो है वो जो है धर्मेंद्र साहब और शर्मिला टैगोर जी की बेहतरीन फिल्म थी अनुपमा, उससे, और इसको पसंद किया है राज ने, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो।

चीन द्वारा बार बार भारतीय सीमा पार करने को रोकने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की फॉरवर्ड पॉलिसी के अधीन बहुत सारे छोटे छोटे पोस्ट बनाए गए थे। ऐसे ही एक पोस्ट श्री जाम वन पर, जो कि पैनगोंग लेक के उत्तरी किनारे पर लगाया गया था, आसपास फॉरवर्ड पॉलिसी की के अधीन और भी पोस्ट थे। चुशुल हवाई पट्टी की सुरक्षा के लिए सिरजाप का बहुत बड़ा महत्व था। फर्स्ट बटालियन 8 गुरखा राइफल्स की डी कंपनी को मेजर, उस समय जो मेजर धन सिंह थापा थे, उनकी कमान दी गई। उनकी कमान के अधीन सिरजाप की सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई उन्हें। डी कंपनी में 28 जवान थे। चीन ने सिरजाप के चारों ओर 3 पोस्ट खड़े कर दिए। 19 अक्टूबर 1962 को चीन की ओर से भारी गिनती में इन्फेंट्री ट्रूप्स आ गए। मेजर थापा को अंदेशा हो गया कि हमला होने वाला है। अपने जवानों को तैयार होने के आदेश दिए।

20 अक्टूबर 1962 सुबह 4:30 बजे पहला हमला हुआ एंटी माफ कीजिए आर्टिलरी और मोर्टार फायर के साथ ये हमला किया गया। 2.5 घंटों तक फायरिंग चली, जब रुकी तो 600 के करीब चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट से करीब 150 गज दूर खड़े थे। चीनी सैनिकों को देखते हुए गोरखों ने लाइट मशीन गन और राइफल से फायरिंग शुरू कर दी। मेजर थापा ने बहादुर गुरुंग के साथ जगह जगह जाकर फायरिंग साधी, कई जगह बदली। चीन के सैनिक भारी गिनती में मारे गए और भारत के भी कई सैनिक शहीद हुए। चीन के सैनिक अब केवल 50 गज की दूरी पर थे। चीनी सैनिकों ने आग के गोले फेंके भारतीय सैनिकों के पोस्ट पर और सैनिकों और पोस्ट छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भारतीय सैनिकों ने हैंड ग्रेनेड और छोटी गोलीबारी की। सब सूबेदार गुरुंग जो लाइट मशीन गन चला रहे थे एक बंकर से गिरने से उसके नीचे दब गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को मलबे से निकाला और फिर लाइट मशीन गन चलानी शुरू कर दी और अंतिम सांस तक लाइट मशीन गन चलाते रहे। दूसरा हमला चीन के सैनिकों ने हैवी मशीन गन और बजूका से किया और जो वहाँ पे एक लेक थी, लेक के तरफ से लेक में से पानी और थल जमीन पर चलने वाले क्राफ्ट से हमला किया। भारतीय सैनिकों की मदद के लिए तभी भेजी गई 2 कश्तियां भी आईं, लेकिन भारी चीनी फायरिंग में एक कश्ती डूब गई और उस पर सवार सारे सैनिक मारे गए। दूसरी कश्ती पर भी फायरिंग हुई लेकिन वो बच निकलने में सफल हो गई। तीसरा हमला हुआ चीनी सेना द्वारा टैंक्स के साथ। केवल 3 सैनिक बचे थे और मेजर थापा के बंकर पर बम गिरा, लेकिन मेजर थापा बच निकले, बंकर से बाहर आए और हैंड टू हैंड लड़ाई करते हुए दुश्मन के कई सैनिकों को मौत के घाट उतारा। मेजर थापा को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया और बंदी बना लिया। उधर हेडक्वार्टर में नायक थापा ने खबर दी कि श्री जाप पर चीन ने कब्जा कर लिया है और सभी सैनिक शहीद हो गए हैं। उन्हें मालूम नहीं था कि 3 सैनिकों को चीन ने बंदी बनाया है जिनमें के मेजर थापा भी शामिल थे। इनमें से राइफलमैन तुलसी राम थापा भागने में कामयाब रहा और वापस बटालियन में आ गया।

मेजर थापा जो बंदी बना लिए गए थे उन्हें भारी यातनाएं दी गई। चीनी सैनिकों को मारने की सजा के तौर पर ये यातनाएं दी गई। भारतीय सेवा सेना और सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए कहा गया। स्टेटमेंट देने से इनकार करने के लिए भी यातनाएं दी गई। भारत चीन युद्ध की समाप्ति के बाद नवंबर 1962 में मेजर थापा को चीन ने छोड़ दिया। उसके बाद 20 अक्टूबर 1962 को मेजर थापा को उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके परमवीर चक्र साइटेशन में जो सर्टिफिकेट साथ मिलता है उसमें लिखा गया उनकी बहादुरी के बारे में। और 20 अक्टूबर 1962 को विवरण के साथ लिखा गया है, दो कंसिडरेबली रिड्यूस्ड इन नंबर्स द पोस्ट हेल्ड आउट टू द लास्ट व्हेन इट वाज फाइनली ओवररन बाय ओवरवेलमिंग नंबर्स ऑफ द एनिमी। मेजर थापा गॉट आउट ऑफ हिज ट्रेंच and killed several of the army enemy in hand-to-hand fighting before he was finally overpowered by Chinese soldiers. Major Thapa's cool courage, conspicuous fighting qualities and leadership were in the highest traditions of our army. मेजर थापा को लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक से रिटायर होने का मौका मिला और 30 अप्रैल 1980 को वो रिटायर हुए। 5 सितंबर 2005 को 77 वर्ष की आयु में 77 ईयर्स की एज में उनका स्वर्गवास हुआ। उनको और उनके साथियों को शत शत नमन और जय हिंद। आप सुन रहे हैं महक 2RRR 88.5 FM पर अपना मनपसंद कार्यक्रम महक, जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक। अब पेश है किशोर कुमार जी की आवाज़ में ये बेहतरीन गाना। और ये जो गाना है, हालांकि जैसा मैंने बताया किशोर कुमार जी की आवाज़ में है, लेकिन इसका संगीत दिया है हेमंत कुमार जी ने और फिल्म है 2 × 4। 02-9816-2777 हमारा नंबर यहाँ स्टूडियो में।

बहुत ही प्यारा गाना, और आपको कहना चाहूँगा कि आप जब फ़ोन करते हो केवल फरमाइश के लिए नहीं, कभी कभी आप में से कई हैं जो फ़ोन करते हैं केवल इसलिए कि वो बताना चाहते हैं कि कार्यक्रम उनको अच्छा लगा और कार्यक्रम सुनने में वो हमेशा हर सप्ताह कार्यक्रम सुनते हैं। तो इससे मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपको कार्यक्रम पसंद आता है और पसंद आया, और इस बात की भी खुशी होती है कि आपके लिए मैं ये कार्यक्रम पेश कर सका। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कार्यक्रम सुनने के लिए और उसके बारे में जो आप कहते हैं वो कहने के लिए। अगला गाना पसंद किया है शांति ने और फिल्म है अनारकली। ये हिम्मत जी के गाए हुए गानों में से, शुरू के गानों में से एक है। तो पेश है फिल्म अनारकली का ये बेहतरीन गाना, जाग दर्दे इश्क जाग।

बहुत ही प्यारा गाना महक 2RRR 88.5 FM पर. और अगला गाना जो है वो है हेमंत कुमार जी ने इस फिल्म का संगीत दिया था और गुरुदत्त साहब ने ये फिल्म डायरेक्ट की थी. और फिल्म क्या बात करें, माफ कीजिए, मैं बताना चाहता था कि साहिब बीवी और गुलाम फिल्म जो है अपने समय की, क्या अब तक भारतीय जो फिल्मी इतिहास है उसमें एक ऐसी फिल्म है जिसका योगदान बहुत ज़्यादा माना जाता है. तो पेश है आपके लिए हेमंत कुमार जी की संगीत निर्देशन में आशा भोसले जी की आवाज़, साहिब बीवी और गुलाम.

इस बीते सप्ताह एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबके दिल को दहला के रख दिया, पूरे देश को दहला के रख दिया। बृहस्पतिवार दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद के हवाई अड्डे से एयर इंडिया की बोइंग 787 की ड्रीम लाइनर हवाई जहाज की उड़ान उड़ी, लेकिन उड़ने के 30 सेकंड बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। क्रू और यात्री एक यात्री के सिवाय विश्वास कुमार रमेश के सिवाय सभी की मृत्यु चली गई हो, और एक व्यक्ति जो बचा, विश्वास कुमार रमेश, ठीक समय पर इमरजेंसी एग्जिट से बाहर कूद गया और उसकी जान बच गई। जिस इलाके में प्लेन गिरा वो मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था। हादसे के कारण 49 लोगों की मृत्यु हुई जो हॉस्टल में थे या हॉस्टल के आसपास थे। कुल 290 लोगों की जान गई है। रिश्तेदार भारी गिनती में अपनों के लिए अस्पतालों में पहुंचे हैं और रिश्तेदारों का डीएनए लेकर मृतकों से मैच करने का काम शुरू हो गया है। और अब रिश्तेदारों को इंतज़ार करना होगा कि उनका डीएनए मैच होता है और अपने रिश्तेदारों को वो घर ले जा सके। प्लेन का दो ब्लैक बॉक्सेस में से एक ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, इससे हादसे के कारण को जानने में काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरे ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है। हादसे में बचने वाले एक जीवित व्यक्ति बचा है, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया कि विश्वास कुमार रमेश है, उसके हाल पूछने के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह गए और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए। एयर इंडिया ने क्रू और यात्रियों के परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। हादसे के कारण घायल होने वालों के इलाज का पूरा खर्च उठाने का वादा किया है। और भारत की सरकारी एजेंसी इंडियाज़ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट ब्यूरो हादसे का कारण ढूंढने पर काम कर रही है। अमेरिका और यूके की सिमिलर एजेंसियां भी इसमें मदद देंगी। एयर इंडिया ने फ्लाइट नंबर 171, जो कि इस फ्लाइट का नंबर था, इस नंबर को भविष्य में कभी ना प्रयोग करने की घोषणा भी की है। इस दुखद समय में हम प्रभावित परिवार वालों के दुख में साथ हैं उनके। 2011 में उड़ान शुरू करने वाला ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जहाज एयर इंडिया ने लिया था। इन जहाज़ों के लिए बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जहाज़ों के लिए ये पहला क्रैश है, और हम प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में कोई क्रैश इन जहाज़ों का न हो। ये जहाज़ 2014 में एयर इंडिया ने खरीदा था। टाटा ग्रुप ने 2022 में एयर इंडिया को खरीदा था। हेमंत कुमार जी के गाए हुए गाने या हेमंत कुमार जी के संगीत में ढाले हुए गाने ये आपके लिए पेश कर रहा हूँ आज के कार्यक्रम में। और ये गाना जो है, ये है, बहुत ही प्यारा गाना है। इसको रोशन जी ने संगीत में ढाला है और आवाज़ है हेमंत कुमार जी की। फिल्म है ममता, बहुत ही प्यारी फिल्म थी ममता, और उसके गाने तकरीबन सारे ही अच्छे थे, और ये गाना तो बहुत ही बेहतरीन है।

0: लता जी के साथ ये गाना गाया हेमंत कुमार जी ने, और अगला गाना जो आपके लिए पेश करने वाला हूँ मैं, वो लता जी ने ही गाया है और हेमंत कुमार जी का संगीत है। और लता जी ने बहुत काम किया हेमंत जी के साथ, तो सुनना बनता है कि वो हेमंत जी के बारे में क्या सोचती थी।
1: हेमंत दा इसमें विश्वास करते थे कि सिंपल ट्यून हो, बोल अच्छे हो, और जब गाना रिकॉर्ड होता था तो उनके म्यूजिक में भी एक बड़ा सिंपल ये रहता था, बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा या इसमें वो विश्वास नहीं करते थे, और खुद गाते थे अच्छा। तो जो खुद गाता है वो जब गाना बनाता है तो उसका एक अलग ही रंग हो जाता है।
0: तो लता जी ने हेमंत कुमार जी के लिए कितनी अच्छी बात कही कि वो क्योंकि खुद गाते थे, उनको पता था कि गाने वाले गायक जो हैं उनके मन में क्या है और वो किस तरह से गाते हैं। और लता जी से एक गाना गवाया था हेमंत जी ने, फिल्म थी नागिन, और इस गाने को और इस

और अब समय है बातें कुछ इधर की कुछ उधर की करने का। महाराष्ट्र के अहल्या नगर जो के वहाँ के महारानी के सम्मान में नाम दिया गया है जगह का, महाराष्ट्र के अहल्या नगर में है शनि श्रृंगार शिंगणापुर मंदिर, शनि शिंगणापुर मंदिर। और इस मंदिर के ट्रस्ट ने 167 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, इनमें 114 मुसलमान हैं। हिंदू समाज संगठन ने मांग की थी कि गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाया जाए मंदिर की सेवा में से। भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट बनने वाले शुभाशु शुक्ला का सपना थोड़ा रुक गया है और अब कल 16 जून को लॉन्च किया जाएगा रॉकेट, क्योंकि लॉन्च रॉकेट में कुछ खराबियां जो आई थी उनको अब ठीक कर दिया गया है। 21 जून से नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो का नया सीजन शुरू हो रहा है। इसमें अर्चना पूरन सिंह, जिनको आप जानते ही होंगे इस शो के द्वारा, वो बैठ के जोक्स सुनती हैं और खूब ठहाके लगाकर हंसती हैं, तो इसमें अर्चना पूरन सिंह तो रहेंगी ही, नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल होंगे और ये दोनों परमानेंट गेस्ट होंगे इस प्रोग्राम में। और आप हैं

हमारे परमानेंट गेस्ट महक 2RRR 88.5 FM पर। और आइए चलें अगले गाने की ओर। और अगला गाना पसंद किया है माही ने, और माही ने पसंद किया है हेमंत कुमार जी की आवाज़ में। फिल्म है बात एक रात की और संगीत दिया है एसडी बर्मन साहब ने। और इस फिल्म में थे, आप जानते ही हैं, देवानंद साहब,

हमारी कर्म भूमि की बातें करें तो प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी G7 मीटिंग के लिए कनाडा गए हैं और कनाडा में वो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग में आप समझ गए टैरिफ और ओकस मुख्य मुद्दे होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने इसराइल के मिनिस्टर इतमार बेन गवीर और बेजालेल स्मोट्रिक पर प्रतिबंध लगा दिए हैं यूके कनाडा न्यूजीलैंड नॉर्वे के साथ मिलकर, और कारण है कि दोनों का पैलेस्टाइन में पहले से रहने वालों को वहां से निकालने पर जोर देना और उनके विरुद्ध भावनाएं भड़काना मानव अधिकार शोषण का जो है उसको ना रोक पाना। ऑस्ट्रेलिया के पॉपुलर टीवी शोज नेबर्स, द प्रोजेक्ट जो कि चैनल 10 पर आता है, और ABC पे आने वाला प्रोग्राम Q&A अब बंद हो रहे हैं, नहीं आएंगे वो। ये केवल दर्शकों के लिए ही बुरा समाचार नहीं है लेकिन इन शोज पर काम करने वालों के लिए भी बुरी बात है। एक गाना आया था हेमंत कुमार जी का और उसकी एक आपको झलक जरूर सुनाना चाहता हूँ। फिल्म है बहुरानी, बहुरानी माफ कीजिए, बहुरानी।

अगले सप्ताह मिथुन चक्रवर्ती, सुरैया, हेमंत कुमार, मजरू सुल्तानपुरी जी के जन्मदिन हैं। हेमंत कुमार जी का कल है, इसलिए कार्यक्रम मैंने आज आपके लिए पेश किया। मशहूर लोगों में सलमान रश्दी, जिनकी किताब सैटैनिक वर्सेस से वो बड़े पॉपुलर हुए, और म्यांमार बर्मा की लीडर आंग सान सू ची, राहुल गांधी भारत के ऑपोजिशन लीडर, लिएंडर पेस जो टेनिस खिलाड़ी हैं, और अन्ना हजारे जो कि एक एक्टिविस्ट हैं, और द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं अभी, उनके हैं जन्मदिन। और 21 जून को शॉर्टेस्ट डे है यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में और ऑस्ट्रेलिया में, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ लॉन्गेस्ट डे है, और 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे भी है। कार्यक्रम का समय अब समाप्त होने को आ गया है, आपसे इजाज़त लेने का समय आ गया है, और अंतिम गाना जो आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ, उससे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद महक सुनने के लिए, और आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें और एक दूजे का ध्यान रखें। अंतिम गाना जो आपके लिए पेश छोड़े जा रहा हूँ वो है फिल्म 20 साल बाद का, जिसका संगीत दिया था हेमंत कुमार जी ने, और दो गाने भी गाए थे लेकिन लता जी का गाया हुआ ये गाना बेमिसाल है। तो अगले सप्ताह तक के लिए मुझे सुखदेव जायसवाल को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।